0: ताकिमिया कर दिया नुकसान जिनके अनिमिन तो पांच दिमों के में गलत प्रवेश होने मासूम तो पत्रों के तो यू के तो एक्यू पनेमतोस नीन के आई के सुसे ओना स्तो ने ओ के स्ते ताले तो में गलत ते ओ के सतीरस मोनी सु क्रिस्टु में तो पांच दोनिमो
1: के में तातु पनेमतोस
0: पांच दोनिमो ने संदेश